रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहण ना जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगे आईया, सिद्धां पुरखा किया वड्याईया।

आए चलियह दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहेब साचै नाए रहाओ साचे नाम की तिल वडे आई आख थके कीमत नहीं पाई।

दास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिले त्रिपतास मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उदम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर मैं जंतु उपाए ताका रिजक आगे कर तरया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभाहे।

चेरे शरिया। तिन कवण खलावै कवण चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस आश

राग आशा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुध जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आप

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरे करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावो, आप हाथ दय मोहे बचावो। सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दय मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता।

आत्मा सा जवन काल जोगी सेवकियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देहे तार सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तार आप आपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्बकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव ना पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड कश भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पायो राव कही पूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत्पुज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पायो शंकर इकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण खाता जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हवा मरे पुरख जवन पाग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

नानक मोह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वय सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा।

सहाई, दुष्ट दुख ते ले हो बचाई। सवैया, पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मानेओ। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे, हम एक ना जा।

समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहौ जिस दिया ए वडियाइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटुक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कहे नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे, आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी। संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहया।

पौड़ी। तिथे तू समरथ जिथे कोए नाहे, उथे तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन के जम के दूत नाए तेरे छड़ जाहे, पौ जल बिखम असगाह गुर शब्दी पार पाहे। जिन को लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सैनो कृपाल संभाले साहे साहे, बिरथा कोई न जाए जे आवै तो दयाहे। श्लोक महला पांचवा। अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर से तीरतया दरगह पाइय ठाओ, कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वथ दे। जग मह उत्तम काडी है विरले के महला पांचवा। रखे रखना

0: सुनहार सत्याकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जानो आपे। हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा,

अवगण नाम विचारो को माटी का मेरा गुण अवगण नाम विचारो को माटी का क्या तोपे स्वामी मानस की गत ए काम क्रोध अर लोभ मोह भिन्स जाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ रथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जियो कबीर जो मैं चितवाओ ना करे क्या मेरे चितवे होए

कबीर जो मैं चितवा ना करे क्या मेरे चितवे होए अपना चितव्या हर करे जो मेरे चित ना होए महला तीजा चिंता पे आव कराए सी अचिंत पे आपे दे नानक सो साला ही है जे सबना सार करे महला पंजवा कबीर राम ना चेतेओ फिरया लाल चमाहे पाप करंता मर गया अहद पुनी खिन माहे कबीर राम ना चेतेओ फिरया लाल चमाहे पाप करंता मर गया

ਵੈਤੇ ਸਲਾਏ ਲੜ ਲਾਏ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਸਲੋਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹੰਮੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਲਾਵਹਿ ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵਹਿ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤਿਸ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰਹੁ ਤਿਸ ਰਸਨਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੈ ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀ ਜੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਜ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ ਮੁਖ ਤਾਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਲਿਵ ਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ ਮਨ ਸਰਣੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਮਨ ਸਾਸਾ ਸਿਮਰਹੋ ਪ੍ਰਭ ਊਚੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭੁਖਨ ਪਹਿਰੀ ਜੈ ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸ ਕੀਜੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵ ਹਸਤ ਅਸਵਾਰੀ ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਬਹੁ ਨਾ ਬਿਸਾਰੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਧਨਾ ਰਾਖ ਪੁਰਵੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਤਿਸਹ ਧਿਆਈ ਤਿਸਹ ਧਿਆਏ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖ ਹੈ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਖੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਹਿ ਪੁਨ ਬਉਦਾਨ ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਚਿਤਾਰੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਰਹੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹਿ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਾਹੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖਾ ਬਿਸਮਾਦ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚੱਲੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗਹੁ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਮੂਲ ਨ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੇ ਮਾਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਤਿਸ ਹੈ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਸਿਉ ਰਾਚ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪਾਏ ਜਪ ਸੋਏ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪਾਏ ਸੋ ਨਾਉ ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸੁ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਆਪੋ ਕਛੁ ਨ ਕਿਨਹੁ ਲਾਇਆ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤ ਲਗੈ ਹਰ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਇਨ ਕਹਿ ਕਛੁ ਨ ਹਾਥ ਸਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤਨ ਬੇਰਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਇਹ ਉਪਰ ਜਤਨ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪਰ ਫੁੱਲੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਭੁੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ
साधकै संग न कतहु तावै, साध संग अस्थित मन पावै, साधकै संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस्यो नहीं बैर, साध कै संग ना बीगा पैर, साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध कै संग नाही हो ताप, साध कै संग तजै सब आप, आपे जाने साध बड़ा आई, नानक साध प्रभु बने आई, साध कै संग न कबहू तावै, साध कै संग सदा सुख पावै, साध संग बस्त अगोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै, साध कै संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुचै, साध कै संग दृढ़ै सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म, साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान, साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्ब थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नही कश काल, दर्शन पेटत होत निहाल, साध कै संग कलुखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिशरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग न बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाउ, साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट जीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा बेद न जानै, जेता सुनै तेता बखियानै, साध की उपमा तेहु गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊच ते ऊची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाही सलोक, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक सबिन कोय, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ सोख, ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लागै तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, ज्यो बसदा को खोदै को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाउ, नानक ज्यो पावक का सह सुभाउ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागै जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊचा मन अपनै, है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा ना भया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै एकै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा साद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप,
ब्रह्म ज्ञानी का दर्स बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाय अदे आख्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक, कुरतार है जो अंतर नाम, सर्व मैं पिख है भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक उहु अपरस सगल निस्तार है, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, परत्रय रूप न पिख है नेत्र, साध की टहल संत संग हेत, करन ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुरु प्रसाद भिख्या पर हरे, मन की बाशना मन ते तरै, इंद्री जित पंच दुख ते रहत, नानक कूट मध्ये को ऐसा अपरस, बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न, कर्म करत हुवै नेह कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै, मान तान अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवराह नाम जपावै, नानक ओ बैसनो परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सकल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खुवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नितनीत, मन तन अर्पै बिसन परीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत कौ पावै, सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्म मै सोधै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो न आवै, वेद पुराण सिमरत बूजै मूल, सूखम मै जानै असथूल, चौहवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित कौ सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौहवरना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिस की गत होए, साध संग पावै जन कोए, कर कृपा अंतर उर तारै, पास प्रेत मुगद पाथर कौ तारै, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितै न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, तिस का नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगै प्रवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी पराय, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं बियोग, तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर राख है, तैसा तिन नाओ, आपे करन करावन जोग, प्रभ पावै सोई फुन होग, पसरेओ आप होए अनत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अभिनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पय निहाल, सलोक उस्तत करहे अनेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पय तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपी सर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारै, कई कोट कब का विचारै,
ਕਈ ਕੋਟ ਨਵ ਤਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਅਭਿਗ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸਰਮ ਮਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰਦੇਸ ਪਰਮਾਹੇ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਾਸ ਭੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪ ਜਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖਿਅਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੈ ਸੂਤ ਧਾਰੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸ ਉਤਾਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਤਕ ਕਈ ਕੋਟ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰ ਸਵਾਸਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸੁਮੰਦ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਰ ਜੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਜਖਯ ਕਿਨਰ ਪਿਸਾਚ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੈ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮਹਿ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੈ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਹਾਥੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪਹੇ ਬਹਿ ਰਾਗੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜਨ ਤੇ ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪਿਆਸ ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੈ ਸਤ ਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰ ਖੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਕਈ ਜੁਗਤ ਕਿਨੋ ਬਿਸਤਾਰ ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਤ ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਏਕੋ ਨਿਤਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਭੈ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਮਾਰੇ ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰਣੈ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਜੋਗ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਥਾਪਨ ਹਾਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਾਰ ਰਹਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਆ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਤ ਉਧਾਰੈ ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਖੇਲੈ ਬਿਕਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੈ ਕਹੋ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੀ ਛਿਲੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ ਅਨ ਜਾਨਤ ਬਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ ਜੇ ਜਾਨਤ ਆਪਣ ਆਪ ਬਚੈ ਭਰਮੇ ਭੂਲੈ ਦਹਿਦ ਸਤਾਵੈ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ ਤਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣੈ ਜਗਦੀਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੈ ਦੇਖ ਬਡਾਈ ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਓ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੋਨ ਥੀਓ ਕਬ ਹੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ ਕਬ ਹੂੰ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗ ਹਸੈ ਕਬ ਹੂੰ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ ਕਬ ਹੂੰ ਊਬ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ ਕਬ ਹੂੰ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ
कबहू निरत करे भव भांत, कबहू सोए रह दिन रात, कबहू महाक्रोध बिकराल, कबहू सर्व की होतर वाल, कबहू होए बह बड़ राजा, कबहू बेखारी नीच का साजा, कबहू अप कीरत मह आवै, कबहू भला भला कहावै, ज्यों प्रभ राखै तिव ही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै। कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मोन धारी लावै ध्यान, कबहू तट तीरथ इसनान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन भर मैं भरमिया, नाना रूप ज्यो स्वंगी दिखावै, ज्यों प्रभ भावै तिवै नचावै, ज्यो तिस भावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कबहू साध संगत ए पावै, उस अस्थान ते बाहुर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस अस्थान का नहीं विनास, मान तन नाम रते एक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए बिश्राम, नानक प्रभ कै सद कुरबान, सलोक सुखी बसै मसकीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसका अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुवान, जो जाने मैं जोवन वंत, सो होवत बिष्टाका जंत, आपस को कर्मवंत कहावै, जन्म मरै बहु जोन परमावै, धन भूमिका जो करै गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै, नानक इहा मुक्त आगै सुख पावै, धनवंता होए क्या को धनवंता होए, कर गर्भावै तृण समान, काश संग न जावै, बहु लश्कर मान को ऊपर करे आस, पल पीतर तांका होए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, किन में होए जाए पसमंत, किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी, गुर प्रसाद जाका मिटाए अभिमान, सो जन नानक दरगह परवान, कोट कर्म करे हों तारे, श्रम पावै सगले बिर थारे, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर अवतार, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगह कहो कैसे गावै, आपस कहो जो भला कहावै, तिसे भलाई निकट न आवै, सर्व की रेंजा का मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कश होए, तब इस को सुख ना ही कोई, जब ए जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग नहीं चलना ही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटै, गुरु प्रसाद नानक हों छूटै, सहस खटे लख को उठतावै, तृपत न आवै, माया पाछै पावै, अनक भोग बिख्या की करै, नह तृपतावै, खप खप मरै, बिना संतोख नहीं को राजै, सुपर मनोरथ बिरथे सब काजै, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसै प्राप्त होए, करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करन करावन करने हार, इसके हाथ कहा विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप प्रभ सोए, ज्यो किश की नो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हूं कै संग, बूझै देखै करै बबेक, आपे एक आपे अनेक, मरे न बिनसै आवै न जाए, नानक सद ही रहया समाए, आप उपदेशै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो अपन बिस्थार, सब कछ उसका ओ करने हार, उस ते पिन कहो किश होए, थान तनंतर एकै सोए, आप उन्हें चले तो आप करने हार, कौतुक करे रंग अपार, मन मह आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए, सत सत सत प्रभ स्वामी, गुरु प्रसाद किने वख्यानी, सच सच सच सब कीना, कूट मधे किने बिरलै चीना, भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी श्रवण बख्याणी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत, श्लोक संत सरन जो जन परै, सो जन उदरन हार, संत की निंदा नानका बहुरु बहुरु अवतार, अष्टपदी, संत कै दुख न आरजा कटै, संत कै दुख न जमते नहीं छुटै, संत कै दुख न सुख सब जाए, संत कै दुख न नरक में पाए, संत कै दुख न मत होए मलीन, संत कै दुख न शोभा ते हीन, संत के हते कौ रखे न कोए, संत कै दुख न थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी तरै,
संत के दुखन ते मुख पवै, संतन के दुखन काग ज्यों लवै, संतन के दुखन सर्प ज्यों पाए, संत के दुखन तिरगत ज्यों किरमाए, संतन के दुखन तृष्णा मैं जलै, संत के दुखन सब को शलै, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच नीचाए, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावै तां ओए पी गत पाहे, संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख मैं दुख, नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्याग, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा भिकारी, संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै, संत के दुखी को नाही ठाउ, नानक संत पावे ता लय मिलाए, संत का दुखी आद बीच ते टूटै, संत का दुखी कितै काज न पहुँचै, संत के दुखी को उद्यान प्रमाइयै, संत का दुखी उजड़ पाइयै, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किश नाहे, आपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत पावे ता लै उबार, संत का दुखी इयों बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यों पावक ईधन नहीं तरपै, संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यों बुआर तेल खेत माहे दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी साध मिथ्या कहत, केरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पावै सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरै ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजा ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत कै दुख मत रष्टै कोए, जैसा पावै तैसा कोई होए, पया किरत न मेटै कोए, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसक्यो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावहो सास गिरास, सब कछु वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़ पागी नानक जन से सलोक, तजो स्यानप सुरजनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पहु जाए, अष्टपदी मानुख की टेक वृथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लागे आए, मारे राख है एक आप, मानुख कै किशना ही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत बेवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लेह जियो, ननो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, बड़पागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करह विचार, से तनवंत गनई संसार, मान तान मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जान हो ते सुखी, एको एको एक पछाने, एतोत कियो सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिन है निरंजन जान्या, गुरप्रसाद आपन आप सुझै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, आन देन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिस न लागै दुख,
जिस कौ हर प्रभ मन चित आवै सो संत सुहेला नहीं डोलावै। जिस प्रभ अपना कृपा करै सो सेवक कहो किस ते डरै। जैसा सा तैसा दृष्टाया आपुने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तत सब बूजिया। जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सूखम सोई असथूल। नह किश जनमै नह किश मरै आपन चलित आप ही करै। आवन जावन दृष्ट आन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ट। आपे आप सगल में आप अनेक जुगत राच थाप उथाप। अविनाशी नाही किश खंड धारण धार रहो ब्रह्मांड। अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप। जिन प्रभ जाता सुसु बावंत सगल संसार उदरै तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख बिसारण। आपे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द जाप पय निहाल। उनकी सेवा सोई लाग गए जिसनु कृपा करे बड़ भाग गए। नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। जो किश करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग। सह सुभाए हो वै सो होए करने हार पछाणे सोए। प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिस ते उपजे तिस माहे समाए ओए सुख निधान उन्हों बन आए। आप सकौ आप दिनो मान नानक प्रभ जन एको जान। सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जननहार। जाकै सिमरन उदरी है नानक तिस बलहार। अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप। आपन किया कशु न होए जे सौ प्राणी लोचै कोए। तिस बिन नाही तेरै किश काम गात नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए माहि नाही मोह है। रूपवंत होए नाही मोह है प्रभ की जोत सगल काट सो है। तनवंता होए क्या को गर्भै जन सब किश तिस का दिया दरबै। अत सूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहता वै। जे को होए बहे दातार तिस दिन हार जाने गवार। जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग नानक सो जान सदा अरोग। ज्यो मंदर को थामे थमन त्यो गुर का शब्द मन अस थमन। ज्यो पाखाण नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लागत निस तरै। ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुरु दर्शन देख मन होए बिगास। ज्यो महा उदयान मैं मार्ग पावै त्यो साधु संग मेल ज्योत प्रगटावै। तिन संतन की बादशाह तूर नानक की हर लोचा पूर। मन मूर्ख काहे बिल लाइए पुरब लिखे का लिखिया पाइए। दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिसै चितार। जो काशो कराय सोई सुख मान भूला काहे फिरे अजान। कौन बस आई तेरा संग लपट रहे ओ रस लोभी पतंग। राम नाम जप हिरदे माहे नानक पत सेती कर जाहे। जिस वखर कौ लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया। ताज अभिमान लेहो मन मोल राम नाम हृदय में तोल। लाद के बसंत है संग चाल अवर त्याग बिख्या जंजाल। धन धन कहे सब कोए मुख उज्जल हर दरगह सोए। एहो वापार विरला वापार है नानक ताकै सद बलहार है। चरण साध के तोए तोए पियो अर्प साध कौ अपना जियो। साध की धूर करहो इशनान साधु पर जाइए कुर्बान। साध सेवा वड भागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाई है। अनक बिगन ते साधु रख है हर गुण गाए अमृत रस चाख है। ओट गही संत दर आया सर्व सुख नानक तेह पाया। मेर तक कौ जी वालनहार भूखे कौ देवता आधार। सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे पुरब लिखे का लहना पाहे। सब केश तिस का ओ करन जोग तिस बिंदु सर हुआ न होग। जप जान सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल ए करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जान निर्मल थिया। जाकै मान गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत। भगत भगत सुनिए ते हो लोए जाके हृदय एको होए। सच करनी सचता की रहत सच हृदय सतमुख कहत।
ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੱਚ ਆਕਾਰ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਾਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਕਿਸ਼ ਤ੍ਰੇਹੁ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਭਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਕੋਇ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ ਆਪੇ ਬਿਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੋ ਜਾਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਣੇ ਪਾਓ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਮਨ ਇਹੋ ਅਨਰਾਉ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ ਜੋ ਕਰਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ ਤਿਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨ ਜਾਣੈ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾ ਕੈ ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਨੀਐ ਕਰਤਾ ਕੈ ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਤਪ ਮੈਂ ਤਬੀਸਰ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਮੈਂ ਭੋਗੀ ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾਹੇ ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ ਸਗਲ ਪੁਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਸੇ ਤੇਹੋ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਏ ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ ਜੈਸਾ ਜਨ ਆਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰੈ ਇਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਭ ਅਭਿਨਾਸੀ ਕੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਭ ਅਭਿਨਾਸੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਰ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਓ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰਨਾਉ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਤਾਲ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਭ ਭਵਨ ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗ ਉਧਰੇ ਸੁਨ ਸਰਵਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨ ਗਤ ਪਾਏ ਰੂਪ ਸਤ ਜਾ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ ਸਤ ਕਰਮ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ ਸਤ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਵਿਸਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਤ ਨਰਤਭੁ ਜੈ ਜੇ ਕੋਏ ਨਾਮ ਜਪ ਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਮਿਤ ਗਤ ਜਿਸ ਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਅਵਰ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੀਆ ਨਾਨਕ ਜੋਤਿ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਇ ਬਿਸਮਾਦ ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਚ ਜਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੁਖ ਕਟਣ ਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਲੋਕ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪਰਸਨਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਭੇਖਨਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਨਹਾਰ ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਭ ਤਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਬਕਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਨਤਾ ਬੁਜਨਹਾਰ ਕਉ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ ਬਸਤ ਮਾਹੇ ਲੈ ਬਸਤ ਗਡਾਈ ਤਾ ਕਉ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਬੂਜੈ ਬੂਜਨ ਹਾਰ ਬਬੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ
ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक ही निर्मल रीत, ठाकुर का सेवक जान संग, प्रभ का सेवक नाम कै रंग। सेवक को प्रभ पालन हारा, सेवक की राखे निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ तार, नानक सो सेवक सा सा सुमार। अपने जन का परदा ढाक है, अपने सेवक की सर पर राख है, अपने दास को देव डाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पात राख है, ताकि गात में तो कोई ना लख है, प्रभ के सेवक काओ को ना पहुंचे, प्रभ के सेवक ऊंच ते ऊंचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दैदिस प्रगटाया। निकी कीरी मैं काल राख है, पासम कर लस कर कूट लाख है, जिसका सास न काढ़त आप, ताकौ राखत देकर हाथ, मानस जतन करत बहु पांत, तिसके करत बिरथे जात, मारे न रख अवर न कोय, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करहे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख वेडाणी, बारंबार बार प्रभ जपिया, पी अमृत एहो मन तन तृपिया, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किश अवर नाही दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रस जो जान त्रिपताने, मन तन नामे नाम समाने, उठत बैठत सोबत नाम, कहो नानक जन कै सद काम, बोलो जस जिहबा दिन रात, प्रभ अपने जन की नींदात, करै भगत आत्म कै चाए, प्रभ अपने स्यों रह सुमाए, जो हुआ होवत सो जानै, प्रभ अपने का हुक्म पछानै, तिसकी महिमा कौन बखानौ, तिसका गुण कह एक न जानौ, आठ पहर प्रभ बसै हजूरे, कहो नानक सही जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओटले, मन तन अपना तिन जान दे, जिन जान अपना प्रभु पछाता, सो जान सर्ब थोक का दाता, तिसकी शरण सर्ब सुख पावै, तिसके दर्श सब पाप मिटावै, अवर स्यान पसगली शाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सत पैरा सलोक, सत पुरख जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाओ, तिस कै संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ अष्टपदी, सतगुरु सिख की करै प्रतपाल, सेवक कौ गुरु सदा दयाल, सिख की गुरु दुरमत मल हिरै, गुरु बचनी हर नाम उचरै, सतगुरु सिख के बंधन काटै, गुरु का सिख बेकार ते हटै, सतगुर सिख कौ नाम धन दे, गुरु का सिख वडभागी हे, सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख कौ जी नाल समारै, गुर कै गृह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन में सहै, आपस कौ करकश न जनावै, हर हर नाम हृदय सद त्यावै, मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कार्ज रास, सेवा करत हुए ने कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस बिसवे गुर का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गात जानै, सो सत गुर जिस हृदय हर नाउ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्ब निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मह जान जन मह पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछु परम, सह सियानप लया न जाई है, नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाई है, सफल दर्शन पेखत पुनीत, पर सत चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगा गवे, सुन कर बचन करण आघाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अखियो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखै होए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावै तिस लय मिलाए, जिहबा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूरन बबेक, काहू बोल न पहुचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्बानी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई, अनक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै, साध बलहारी सतगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, ए हर रस पावै जन कोए, अमृत पीवै अमर सो होए, उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास,
आठ पैर हर का नाम ले, साच उपदेश सेवक कौ दे, मोह माया कै संग न लेप, मन में राख हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भरम मोह दुख तै तेनासे। तपत माहे ठाण वरताई, आनंद पहया दुख न ठे पहाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे, पाओ चुका निरपाओ होए बसे, सगल ब्याद मन ते खै नसे, जिसका सा तिन कृपा तारी, साध संग जप नाम मुरारी, थेत पाई चुके ब्रह्म गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन, निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कला तार जिन सगली मोही, अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोए, सर्ब निरंतर एको सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, भय प्रगास साध कै संग, रच रचना अपनी कल तहारी, अनक बार नानक बलहारी, श्लोक साथ न चल बिन भजन, बिख्या सगली शार, हर हर नाम कमावना नानक एहो धन सार, अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर उपाव सब मीत बिसारो, चरण कमल रिदमै उर तहारो, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हर वथ, एहो धन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माहे, सर्ब रोग नानक मिट जाहे। जिस धन कौ चार कुंट उठता वै, सो धन हर सेवा ते पावै, जिस सुख कौ नित बाछै मीत, सो सुख साधु संग परीत, जिस सोभा को करह भली करनी, सा सोभा भज हर की सरनी, अनको पावी रोग न जाए, रोग मिटै हर अवखद लाए, सर्ब निधान मैं हर नाम निधान, जप नानक दरगह परवान, मन प्रभु दौ हर कै नाए, दैद सताव ते आवै ठाए, ताको बेगन न लागे कोए, जाके हृदय बसै हर सोए, कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिनसै पूरन होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास, तित कर जाए बसै अबिनासी, कहो नानक काटी जम फासी, तत विचार कहे जन साचा, जन मरे सो काचो काचा, आवागवन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, एव रतन जन्म का हुए उदार, हर हर सिमर प्राण आधार, अब अनको पावना छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन बंशत नानक फल पाए, संग न चाल स्थिर तना तू क्या लपटावै है मूर्ख मना, सोत मीत कुटंब अर बनता, इन ते कहो तुम कवन सनाथा, राज रंग माया बिस्थार, इन ते कहो कवन छुटकार, असो हस्ती रथ असो वारी, झूठा डंफ झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना, नाम बिसार नानक पशुताना, गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बोडू बेस्याने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिख जाहे, आप जपहो अवरा नाम जपा वाहो, सुनत कहत रहत गत पा वाहो, सार भूत सत हर को नाओ, सह सुभाए नानक गुण गाओ, गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिन सजाए होमै बिख फैल, होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम समाल, शाड़ सियाण पसगली मना, साध संग पावै सच तना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगह जयकार, सर्ब निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख, एको जप एको सलाहे, एक सिमर एको मन आहे, एक सके गुण गाओ अनंत, मंतन जाप एक भगवंत, एको एक एक हर आप, पूर्ण पूर रहो प्रभ आप, अनिक बिस्थार एक ते पहे, एक आराद प्राशत गए, मान तन अंतर एक प्रभ रता, गुरुप्रसाद नानक एक जाता, सलोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरणाए, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए, अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभ दान, कर कृपा देवहो हर नाम, साध जना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर, सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें ते आवाओ,
चरण कमल सिउ लागै प्रीत, भगत करहु प्रभु की नित नीत, एक ओट एको आधार, नानक मंगै नाम प्रवसार। प्रभु की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावै बिरला कोई, जिन चाखिया से जान त्रिपताने, पूरन पुरख नहीं डोलाने, सुपर परे प्रेम रस रंग, उपजे चाउ साध कै संग, परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगास आन दिन लिव लाग, बडभागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पही, सतगुरु ते निर्मल मत लई, जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक की नो सदा निहाल, बंधन काट मुकत जन पया, जन्म मरण दुख भ्रम गया, इश पुनी सरधा सब पूरी, रव रहया सद संग हजूरी, जिस का सा तिन लिया मिलाए, नानक भगती नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल ना पानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै, सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जे अगन में राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै, सो क्यों बिसरै जे बिखते काटै, जन्म जन्म का टूटा गांडै, गुर पूरै तत एह बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो ए काम, आन त्याग जप हो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावहो, आप जपहो अवरह नाम जपावहो, भगत पाए तरिय संसार, बिन भगती तन होसी शार, सर्ब कल्याण सुख निद नाम, बूढ़त जात पाए बिश्राम, सगल दुख का होवत नास, नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर एही सुआओ, नेत्रों पेख दरस सुख होए, मन बिकसै साध चरण धोए, भगत जना कै मंतन रंग, बिरला को पावै संग, एक बस्त दीजै करमया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्व समाए, प्रभक्षण दीन दयाल, भगत वशल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आदि पुरुष कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावै मन ही।

चार कुंट तय दिसे समाहे। तिसते भिन्न नहीं कोठाओ गुरप्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमरत मैं देखो ससियर सूर नखत्र मैं एको। बाणी प्रभु की सबको बोले आप अडोल न कब हुंडोले। सर्व कला कर खेले खेल मोल न पाई है गुणे अमोल। सर्व ज्योत में जाकी ज्योत धर रहे हो स्वामी ओत पोत। गुरु प्रसाद परम का नास नानक तिन में एहो विश्वास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म। संत जना सुने शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन। जिन जाता तिसकी रहत सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माने करण करावन हर प्रभ जाने। अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस भावे ता करे बिस्थार तिस भावे ता एकंकार। अनक कला लखी नह जाए जिस भावे तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप आप भरपूर। अंतर्गत जिसे आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए। सर्व भूत आप वरतारा सर्व नैन आप बेखन हारा। सकल समग्री जाका तना आपन जासो आप ही सुना। आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया। सब कह मद अलिप तो रहे जो किश कहना सो आपे कहे। आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता लय समाए। किसते होए सो नाही बुरा और कहो किने का शुकरा। आप भला करतूत अतनी की आपे जाने अपने जी की। आप साच तारी सब साच ओत पोत आपन संगराच। ताकि गातमित कही न जाए दूसर होए ता सो जी पाए। तिसका किया सब प्रवान गुरप्रसाद नानक एहो जान। जो जानै तिस सदा सुख होए आप मिलाए लए प्रभ सोए। ओह धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआउ जन कै संग चित आवै नाउ। आप मुकत मुकत करे संसार नानक तिस जन कौ सदा नमस्कार। सलोक पूरा प्रभ आरा दया पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेखो। सास सास सिमरु गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद। आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरहो। हर तन के पर लिहो पंडहार नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद साध संग भाज परमानंद। नरक निवार उधारो हो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो। चित चित वहो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार। उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल यह रतन। सोनत कमावत हो तो उदार आप तरह लोक निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय। प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक उदर है तिनके साथे। सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर पय सब रीन अमृत नाम साध संग लैन। सो प्रसन्न पय गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव। आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभ तहारी नानक निभि केप हमारी। प्रभ की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकाग्र चीत। सुख मने सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सोहो तिन दान। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते ऊच पाए स्थान बहुर न होवे आवन जान। हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रिद नाव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध। विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान। चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास।
सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख पहने गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस

सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

हादरा दूर कथ न कथि न आवै तोट। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देदा दे लै दे तक पाही, जुगा जुगंतर खाही खाही, हुक्मे हुक्म चलाए राहु। नानक विगसै बेपरवाहु, साचा साहिब साच नाय, भाखिया भाउ अपार, आख है मंग है देहि दे, दात करे दातार, फेर के अग्गै रखिए चित दिसै दरबार, मुहाओ के बोलन बोलिए चित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सच नाउ वड्याई विचार, करमी आवै कपड़ा नदरी मुख द्वार, नानक एवै जानिए सब आपे सुचियार।

निदान गाविए सुनिए मन रखिए भाउ दुख पर हर सुख कर लै जाय। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा इक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। तीरथ नावा जे तिस पावा विण भाणे के नाए करी जे ती सिर ठुपाई वेखा विण करमा के मिले लई मत विच रतन जवार माणिक। जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। जे जुग चार यार जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाओ रखाए कै जस कीरत जग ले। जे तिस नदर ना वई तवात न पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते आ गुण दे।

साहिब नानक रहन रजाय मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह बेभूत किंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जगजीत आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुगित कुवेश भुगत गया दया भंडारण कट कटवा जहनाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद सर अवरा साध संजोग विजोग द्विकार चलावै लिखे आवह भाग आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवान जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव हुवै फरमान ओ वेखै ओना नदर नावै बहुता इहु विडान आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेश आसन लोए लोए भंडार जो किच पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेश एक दू जी भाव लक होए लक हो वह लक वीश लख लख गेड़ाया की यह एक नाम जगदीश एत राह पत पवड़िया चढ़ी है हुए कीस सुन गल्ला आकाश की टाया इरीश नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखन जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण दे न जोर जोर न जीवन मर नह जोर जोर न राज माल मनसूर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुक्ति छुट्टै संसार जिस हत जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती तिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी हुए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवार नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाय धर्म कांड का एहु धर्म ज्ञान कांड का आखु कर्म किते पवन पाणी वै संतर किते कान महेश किते बरमे काढ़त घड़ी है रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देवदान मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया वाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै काढ़त घड़िय बहुत अनूप ताकिया गल्ला कतिया ना जाए जे को कह पिछै पछताए तिथै घड़िय सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िय सुरा सिद्धा की शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोत महाबल सूर तिन महराम रहया भारपूर तिथै सीतो सीता महमा माहि ताकि रूप न कथने जाहि ना ओहि मरहि न ठागे जाहि जिनकै राम वसै मन माहि तिथै भगत वसै के लोह करह अनंत सच्चा मन सोहि सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै तंत नंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुकुम तिवै तिवकार विखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा तीर सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाओ खलागन तपताओ भांडा पाओ अमृत ढाल घड़िय सब सच्ची टकसार जिनको नदर करम तिनकार नानक न

गए मशक्कत काल नानक ते मुखे उजले केती छुट्टी ना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं चपै चंद प्रसाद चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केहे। अचल मूरत अनुभव प्रकाश मितोज कही जय कोट इंद्र इंद्राण साही साहान गनिजय त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वय सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भुजंग प्रिया चंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंगेखे नमस्तंगलेखे नमस्तंगकाये नमस्तंगजाये नमस्तंगगंजे नमस्तंगपंजे नमस्तंगनामे नमस्तंगठामे नमस्तंगकर्मं नमस्तंगअकर्मं नमस्तंगनामं नमस्तंगतामं नमस्तंगजिते नमस्तंगपीते नमस्तंगबाहे नमस्तंगअट नमस्तंगबाहे नमस्तंगअटाहे नमस्तंगजिते नमस्तंगपीते नमस्तंगबाहे नमस्तंगटाहे नमस्तंगनीले नमस्तंगनादे नमस्तंगछेदे नमस्तंगगादे नमस्तंगगंजे नमस्तंगपंजे नमस्तंगोदारे नमस्तंगपारे नमस्तंगस्वेके नमस्तंगनिके नमस्तंगअभूते नमस्तंगअजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्परमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्पेशे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्दाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्धूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग सर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग सुजोगे नमस्तंग रंगे नमस्तंग अपंगे नमस्तंग अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजबे नमस्तस्तजबे अधिसंग अधिसे नमस्तंग अपेशे नमस्तंग निर्तामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वपूपे नमो सर्वकापे नमो सर्वतापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तदेवे नमस्तंगपेवे नमस्तंगजन्मे नमस्तंगसुभनमे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्दयाले नमस्तंगवर्णे नमस्तंगमरणे नमस्तंगजरारं नमस्तंगकृतारं नमो सर्वतन्दे नमो सत्तवन्दे नमस्तंगनिरसाके नमस्तंगनिर्वाके नमस्तंगरहिमे नमस्तंगकरिमे नमस्तंगनन्ते नमस्तंगमहन्ते नमस्तस्तरागे नमस्तंगसुहागे नमो सर्वशोकं नमो सर्वपोकं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वद्याले नमो सर्वपाले। चाचरी चंत्व प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अधेय है अपेय है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है स्वर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अलाह है अजा है अनंत है महंत है अलीक है नरसीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अभा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है भुजंग प्रयाचंद नमो सर्वमान्य समस्ती निदाने नमो देव देवे अपेकी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले
नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौने अनंगी अनाते नृसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ती बेपुते कलंकं बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जुग जुगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेदेवे सुधर्मे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह साह नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं परनाशी अरूपे अनूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अदो उर्ध अर्धं अगंग उगहर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अचेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तोपराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी चांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयाचंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमानी समस्ति निदानी नमस्तुंग निर्णाते नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोक सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदा हृद सिद्धं निवासी चरपट चंत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल चंत्व प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जौन पुरख पार सर्वान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकाल जतर ततर विराज ही अवतूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग नारे एकाद पुरकुदार मूरत अजौन आध शेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जतर ततर दिशा विशा हुए फैलु अनुराग नाम काम बहीन पेख ताम हूं नह जाहि सर्व मान सर्वत्र मान सुदय मान सुताहि एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अनंत को फिर एक देव पेव न जा नहीं जेबे दौर कथेब रूप रंग न जात पासो जाने के जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र वक्र फिर चतुर चक माने पुर तीन लोक चौदह के बिखे जग जापी जे जाप हुआ देवनाद मूर्त प्यु सब जे था परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व सुरच्यो स्वयं पव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सु परम रहत भूत लक अपेश अंग राग न रंग जाक जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमेक अनुस्त एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजनाद रूप सूत अंगेन भंग नातम एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन पे एक सर्व शास्त्र न जा नहीं जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जा कह नेत भक्त नित कोट सिमृत
प्राण शास्त्र नया वही वचित मद पार चंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार असन भंग उपमा नंगन भौ प्रकाश निश्चि ना साजान बाहु साहन साहु राजान राजपानन भान देवान देव उपमा महान इंद्रन इंद्र बालन बाल रंकान रंकालन काल अनभूतांगा बापांगत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड आलिश्य कर्मा दृश्य धर्म सर्वापर्णा डंड वाड्याचाचरी चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्नामे अकामे पुजंग प्रयाचंद चतुर्चक्र कर्ता चतुर्चक्र हर्ता चतुर्चक्र दानी चतुर्चक्र जानी चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्र परती चतुर्चक्र पाले चतुर्चक्र काले चतुर्चक्र पासे चतुर्चक्र वासे चतुर्चक्र मान्य चतुर्चक्र दान्य चाचरी चांदन सत्रह न मित्रह न परमंग न पित्रह न कर्मंग न काय न कर्मंग न काय अजन्मंग जाय न चित्रह न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृश्य कृशय भगवती चंत्व प्रसाद कथते के आचिज देशय के आज पेशय के आगंज कर्मय के आज भरमय के आज लोक है के आदित सुख है के अवधूत बरण के बेभूत करण कि राजंग प्रभा है कि धर्मंग तुझा है कि अशोक है कि अशोक वर्ण है कि सर्वापर्ण है कि जगतंग कृति है कि छत्रंग छत्रे कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनुभव अनूप है कि आद अदेव है कि आप अपेव है कि चित्रंग वहीन है कि कह अधीन है कि रुजी रिजा कह रही मैं रिहा कह कि पाक बे है कि गैबुल गैब है कि अफुल गुनाह है कि साहन साह है कि कारण कुनिंद है कि रुजी देहांद है कि राजक रहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राजा है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काजय कि सर्वत्र साजय कि सर्वत्र काजय कि सर्वत्र राजय कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र थाप्य है कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कली कि सर्वं कली मैं कि परम फही मैं कि अकल अलाम मैं कि साहिब कलाम मैं कि हुस्नल वजू है तमामुल रुजू है हमेशल सलाम है सलीकत मुदा में गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम है रजा की यकीन है अनेकुल तरंग है अपीद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विपूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुधा है सुदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है अंगाध रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामी त्रिभंगी त्रिकामी त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे शुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप है अचिज है अचूत है कि नरकं प्रणाश है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सुदैवं सदा है बेपुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है बेपुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी चंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट चंत्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसावल चंत्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे
अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं सरीकं अमितो अमीकं सदैवं प्रभाहं अजय हैं अजा हैं भगवती चंत्व प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजिर हजूर हैं हमेशल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुस्नुल चराग हैं के कामल करीम हैं के राजक रहीम हैं के रोजी देहांद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के हुस्नुल जमाल है गनीमुल किराज है गरीबुल निवाज है हरिपुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं परनाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं परनाश है बहस्तुल निवास है कि सर्वल गवन है हमेशल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अधीश है अदेशुल अलेक है हमेशुल अपेक है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितु अपंग है मद पार चंद त्व प्रसाद मुनमन प्रणाम गुणगन मुदाम अरवर अगंज हर नर परपंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनपव अनास मुनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जलथल मुदाम अंचिज अंग असुन अपंग उपमा पार गत मितुदार जलतल अमंड दिशुष अपंड जलतल महंत दिशुष बेअंत अनपवनास त्रेतर तुरास आजान बाहु एक सदाहु ओंकाराद कथनी अनाद खलखंड खयाल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आजिज न बात अनचंज गात अनरंज बात अनटुट पंडार अनडट अपार आडीठ धर्म अतटीठ कर्म अनवरण अनंत दाता महंत हर बोल मना चंत्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है कलखंडन है महमंडन है जगतीश्वर है परमेश्वर है कलकारण है सुरवारण है त्रित के तरण है जग के कर्ण मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतीश्वर है ब्रह्मंड से खलखंड से परते पर है करुणा करें जपा जप है तपा तप है अकृता कृत्य अमृत अमृत अमृत अमृत करुणा कृत्य कृता कृत्य तरणी त्रित है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत्य अमृत अमृत जपा कृत्य अमृत अमृत नरनायक है खलकायक है विश्वम पर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है पावभंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग प्रयाचंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग तामसंग सात रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जुग जुगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलय कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो बांक बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी छंद अजय अलय अभय अभय अपू अजू अनाश अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम काम गाह अटाह अनाथे परमाते अजूनी अमुनि नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयाचंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल नामे समस्तुल निवासे निरकामंग विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासे सुधर्मंग विपूते
सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा सुमस्तु निवासी अजाय विपुते गजाय विघ्नि मे हरियंग करियंग करिमुल रही मे चतर चक्र वर्ती चतर चक्र पुगते स्वयं पव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते। वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये। श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत गुण अधिकित प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के मातिम तंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूद दपौन के गौन को जात निवारे पारी बुजान के भूप पली बिद न्यावत शीस न जात विचारे इते पहे तो कहा पह भूप तंत को नंगे पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्री पद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक सिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सब सुचार हजार के दिख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुशासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परि मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरिन मरूर मुवासन मातिम तंगन मान मलेंगे श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निधान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चार सार की तार पछैया तोरत देश मलिंद मुवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सो बात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सबको सरनायक जाचक अनेक सु एक देवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब ताप तपेंगे फुल पर तापन बाढ़ जैत तुन पापन के भोपुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजिंद्र निरादप जौंतर लोक को राज करेंगे कोट स्नान गजा दिकदान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम फास भरेंगे जे नर श्री पत के प्रसह पगते नर फिर न दे तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो नाथ फिरियोली सा समुन्द्र लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बख्यान सुबैठ गए ऐसे ही ऐसे सुबह सुबितायो साच कहूं सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज सरयो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा में है काहू पछा को शीश निवायो को बतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायु कूर किरे और जो सब ही जग श्री भगवान को पेद न पायो को बतान को पूजत है पस को मृत

पिया सा तुम छाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी यह चुन चुन सत्र हमारे मारी यह आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करे हो रच्छा राख ले हो मुहिरख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दुष्कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तुमासा जीवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जीवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जीवन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन पजायो आदंत कै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिन्हें आप सुवारी शिव कन को सब गुण सुख दियो शत्रण को पल मुँह बद कियो काट काट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पहचानत चीटी ते कुंचरिया स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक की पीर पहचाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर्क करा करतारा प्रजा तर तब दे अपारा

तुमरा लखा न जाए पसारा के विसजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कई पूपा अंड जेर से तिजकिनी उत पुज कान बाहुर रच दीनी कऊ फूल राजा हवे बैठा कऊ सिमट भय शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम पव आजुगा स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो वार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो ऋण काता जे अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट रिष्ट रह तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके ताप तन कमह हर हो रिद्ध सिद्ध करो सब हुई दुष्ट छाह चव सके न कोई एक बार जिन तुम्हें सुभारा काल फास्ते ताहि उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख तेरा कड़केत मैं स्वर्ण तिहारी आप हाथ दे लिहो उबारी सर्व ठाउर मोह सहाई दुष्ट दुख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल सकल देह को हरता दुष्ट दुख इन को छह करता श्री अस्त भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वांछित फल पावे सोई दुख न दिसे व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई सुने मूड चित लाए चतुरताया वही दुख दर्द पाव निकट न तिन नर के रह हो जो या की एक बार चौपाई को कहे चौपाई संबत सत्रह सहसपुनि जय अर्ध सहसपुन तीन कही जय पाद्र सुदी अष्टमी रवारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया

एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहे हम एक न जान्यो श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तो हे बखान्यो दोहरा

बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।

माटी का क्या धूप है स्वामी, मानस की गत एही। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ।

0: अलमलखाई सिर छाई पाई मूर्ख अंध पत गवाई बिन नावे किछ थाए न पाई।
1: ऐ बगानी बड़ी मसानी अंदर जाने फिर पुछताणी सतगुर।

सच्चा विखे सोए सब निशाला मारियां करता करे सोए। अगै जात ना जोर अगै जियो नवे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के पौड़ी तुर।

चंदो दीपाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया। गुण जंज लाड़े नाल सोहै परख मोहनिये लया। विवाह होआ सोभ सेती पंच शब्दी आया। जिन किया तिन देखिया जग धंधड़ लाया। हौ बलहारी साजना मीता अवरीता एहो तन।

अंबर तोली पिछे टंक चढ़ाई ए वड वद्दा मावा नाही सब सह नाथ चलाई। ए तातान होवे मन अंदर करी पे आख कराई।

पौड़ी। सतगुर होए दयाल तसरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कब हूँ चूरी है।

सिर पाइए पानी, नानक सिर खुथे सैतानी, इना गल ना पानी, वुठे होए होए बिलावल, जिया जुगत समाणी।

पौड़ी। तुद सच्चे सुबहान सदा कलाणिया, तू सच्चा दीबान होर आवण जाणिया।

बेन गुर अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जा कै हृदय वसया हर सोई, गुरमुख भगत पर

0: सतगुरु जी दी पावन पवित्र तनगी गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्रसाद संगत जीओ प्यार साहब असीस बख्शिश करदे हां, एकाग्रता बख्शिश करदे हां, गुरु दी बख्शिश गुरफती प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह।
0: हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे, तिस जन दूख डिक नहीं आवे। आओ उस महान बख्शिश जिहड़ी सानू कीर्तन दे रूप मालिक ने बख्शिश कीती है प्राप्त करने लई, उस रस नूं माणन दे लई जिहड़ा रस तुसीं रोजाना ही अपने उस पावन स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब तो दूर बैठे